0: पाछे पावे
1: मन के भोग भिक्षा के करे
0: नैत्र पितावे खप खप मरे
1: बिना संतोख नहीं को राजे
0: सुपर मनोरथ मिलथे सब काजे
1: नाम रंग सब सुख होए
0: बड़े भागी किसे

0: की गत मित कोई न लाखे।
1: प्रभु के सेवक कहो न पहुँचे,
0: प्रभु के सेवक ऊँचते ऊँचे।
1: जो प्रभु अपनी सेवा लाया,
0: नानक सो सेवक दे दिस प्रगटाया।
1: नीकी कीरी मैं कल राखे,
0: पसंद करे लश्कर कोट लाखे।
1: जिसका सार न काटते आप,
0: ताको रख देकर हाथ।
1: मानस जंत करत बपात,
0: जिसके करत

0: संत नाम करो विचार
1: एक सिमर नाम आधार
0: आवर पास अमित बसारो
1: चरण कमल हित माए उद्धारो
0: कनक

0: तुमरी शरण पुरख भगवान।
1: सर्व वैकुंठ मुक्त मोख पाए,
0: एक निमक हर के गुण गाए।
1: अनक राज भोग बड़ियाई,
0: हर के नाम की कथा मन पाई।

0: जय आपन ऊच आपन आप नेरा
1: मैं कौन ठाकुर कौन कहिए तेरा
0: बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद
1: नानक अपने गत जानो आप
0: जय शल अशेद अपेद समाया
1: मुहा किसे व्यापत माया
0: आप सको आपे आदेश
1: जय गुण का नाही परवेश
0: जय एक एक

उड़े उड़ आवे सह को साम तिस पाछे बचरे छरिया तिन कवन खिलावे कवन चुगावे मन में सिमरन करिया सब निदान दस अष्ट सिदान ठाकुर कर तल तरिया।

चेत की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो व्रत पारा हमरे दुष्ट सब तुम काब हो आप हाह दे मोहे बचाव सुखी बसे मोर परवारा सेवक सिख सब करतारा

पूप संवादे चार सौ पांच चरित्र समाप्त मस्त शुभ मस्त अफजू दोहराओ।

एक ओहकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याहे श्री अंगद गुर ते अमरदास रामदासे हुए सहाय अर्जन हर गोबिंद नाम सिमरऊ श्री हर राय श्री हरि कृष्ण त्याही है जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कर नौन दयावे ताए सब थाई होए सहाय साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई होए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दी नार दा ध्यान तरके बोलना जी पंजा प्यारियां चौहान साहिब जादियां चालियां मुगतियां हठियां जपियां तपियां जरा नाम जपिया बन के छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अमडिठ कीता तिना प्यारियां सचारियां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलना जी जिन्हां सिंह सिंघनियां ने धर्म हे सीह दिते बांध बांध कटवाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े तन आरिया नाल चरवाए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी सिदके सां सुवासां संग निभाया तिना समूह शहीदां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलना जी पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां जी का ध्यान तरके बोलना जी प्रिथमै सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चेतावै चेतावन का सदका सर्ब सुख होए जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रछया रियायत देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सुहाय खालसा जी के बोल वाले बोलना जी सिखां नूं सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाहु दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार होवे बोलना जी सिखां दा मान नीवा मत उची मत पादे राखे आप अकाल पुरख वाहिगुरु अपने पह दे सदा सहाई दतार दियो श्री ननकाणा साहिब समूह गुरु धामा दे खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो निमाणियां दे माम नितानियां दे ताम नियोटियां दी उड़ने आसरियां दे आसरा धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ आप जिया दे हजूर अरदास बेनती आप जी ने कृपा रहमत की आप दिया प्यारियां संगतां वलों सब तो पहला संगती रूप सुखनी साहब जी दे जाप किते हन उपरंत सोदर रहरा साहब जी दे पाठ होए हन समुची बाणी पढ़द्या सुनद्या भुल चुक दी खिमा बख्शना पढ़ी सुनी बाणी दा भाव संगतां दे दासरियां दे हिरदे ते वसाउणा सब दियां दर हाजरियां तिर फुल पे ढावां प्रवान करनियां धरों करो नाम दान चढ़दी कला दी दाद बख्शनी परिवार में सुख शांति कारोबारां में वादे करने अरदास बेनती है संगतां वलों भाई मनजीत सिंह समूह परिवार नूं आप जी ने नवा ट्रक बख्श किया सच्चे पातशाह आप दा शुकराना करदे अरदास बेनती कृपा करनी जी किरत कमाइया विच वाधे पाउणे मेरा प्रयास रखना सच्चे पातशाह जी लिया होया ट्रक सुख ना करना परिवार दियां गुरमत अनुसार मनोकामना पूरियां करनियां भाई तारा सिंह उन्हां दी तंदुरुस्ती वास्ते अरदास बेनती कृपा करनी तंदुरुस्तियां चढ़दियां कला बख्शनियां मेरा प्रयास रखना सब दियां गुरमत अनुसार मनोकामना पूरियां करनियां बख्शियां खजानिया विचों कड़ाह प्रसाद दी देख सज के हाजिर है करी पाक साल सोज पवित्रा हुलाम भोग हर राय आप जी दा सीत प्रसाद जो छके नाम वाहिगुरु जपे श्री मुख वाग दी बख्श करो सही प्यारे मेल जना मिले आमदा नाम चेतावे नानक नाम चढ़दी कला वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह दोहरा आ गया भई अकाल की
ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ।

प्रकाश जैसे मीन की ना कटे रुच, दीपक प्रकाश प्रीत कटे ना पतंग के, कुसम सुबह

तो ऐसी अगमी वडियाई गुरु दे दर दी, सारे दर प्रवान ने इत्थे बैठे हाँ, ये भी दर बड़ा कमाल दा है। गुरु नानक दा घर है ना जी, जिथे जिथे भी गुरु नानक दा घर है उत्थे दाता ही बरस दी है। ये भी सच है, सानू बस मंगन दी जात नहीं है। ये भी सच, सानू मंगन दी जात नहीं है, पर गुरु परमात्मा ऐसा है फिर भी दे जाता है, बिना मंगन तो ही दे जाता है। पर फिर भी जे कितने मंगन की जाच आ जाए ना गुरु को, फिर बड़ी वड्डी दात मिल जाया करती है। गुरु को ना बड़ी वड्डी दात मिल जाती है जो मंगना आ जाए तो। खैर, गुरु के घर के अंदर खजाने भरे ने, भंडारे भरे ने, बस सानू लैण की जाच नहीं है। मंगना की है, बिन तुद होर जे मंगना, सिर दुखा के दुख देह नाम संतोखिया, उतरै मन की भुख। नाम मंगना, गुरु अपना नाम बख्श परमात्मा, क्यों? क्योंकि नाम दे विच ना जी सारिया ही दातां आ जांदी है, कोई दात नहीं रह जांदी, सारिया दातां नाम दे विच आ जांदी है। इस करके जदों भी मंगो प्रभु अपना नाम दे दे, अपनी सिफत दे दे। आ भुला गलती दी माफी, सात संग आनंद साहिब दा जाप सारे मिलके पढ़िए।

गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु

0: और सतगुर प्रसाद गौड़ी सुखमनी महला पंजवा
1: सलोक आद गुराए नमः जुगाद गुराए नमः सत गुराए नमः श्री गुरुदेवाय नमः अष्टपदे सिमराओ सिमर सिमर सुख पावो कल कलेश तन माहे मिटावो।

प्रभु को सिमरे से मुख सुहावे, प्रभु को सिमरे तन सुख बेहावे, प्रभु को सिमरे तन आत्म जीता, प्रभु को सिमरे तन निर्मल रीता, प्रभु को सिमरे तन आनंद करे रे, प्रभु को सिमरे बसे हर ने रे, संत कृपा ते अंदिन जाग, नानक सिमरन पूरे भाग, प्रभु कै सिमरन कार्ज पूरे, प्रभु कै सिमरन कबू ना झूरे, प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभु कै सिमरन सह समानी, प्रभु कै सिमरन ने चल आसन, प्रभु कै सिमरन कमल बिगासन, प्रभु कै सिमरन अनहद चुनकार, सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार, सिमरे से जन जिनको प्रभ मया, नानक तिंजन सरणी भया, हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग भेद उपाए, हर सिमरन भये सिद्ध जति दाते, हर सिमरन ही चौंकुंट जाते, हर सिमरन धारी सब धरना, सिमरन सिमर हर कारण करना, हर सिमरन कियो सगल आकारा, हर सिमरन में आप निरंकारा,

तेरा संग सहाय। जय महाभयान दूत दम दला दह केवल नाम संग तेरा चल जय मुश्किल होवे अत पारी। हर को नाम खिन माहे उदारी अनक पुनः चरण करत नहीं तर हर को नाम कोट पाप रहर। गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख नेरे सगल सुषुको राजा दुखिया। हर का नाम जप दोहे सुखिया लाख करोरी बंद ना पर। हर का नाम जपत निस्वतर अनक माया रंग तिख नाम बुझावे। हर का नाम जपत आगावे जे मार्ग ए जात अकेला तै हर नाम संग होत सुहिला। ऐसा नाम मन सदा धियाइए नानक गुरमुख परम गत पाइए। छूटत नहीं गोड लख बाही नाम जपत पार पराही अनक बिघन जाए संगारे। हर का नाम तत्काल उदार है

साध जना की सरणी पाए परै जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा नानक ताके बलबल जासा सगल पुरख में पुरख प्रधान सा संग जाका मिटे अभिमान आपस को जो जाने नीचा सौ गनिये सबते ऊंचा जाका मन हुए सगल की रीना हर हर नाम दिन घटगट चीना मन अपने दे बुरा मिठाना पिखे सगल सृष्ट साजना सूग

पुनः मिथ्यास पर दर्भ को हे रहे मिथ्या नेत्र पेखत पार त्रे रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर भिकार गोतावे मिथ्या मन पर लोभ लुभावे मिथ्या तन नहीं पार भुकारा मिथ्या बास रेत बेकारा बिन बुझे मिथ्या सपे सफल दे नानक हर हर नाम लय बिरथि सागत की आरजा साज बिना गय हब सुचा बिरथा नाम बिना धन अंध मुखा बतागे दुर्गंध बिन सिमरन दिन रैन ब्रेथा बेहाये मेघ बिना जो खेती जाए

समास ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्मज्ञानी का गरीबी समाह, ब्रह्मज्ञानी परोपकार महा, ब्रह्मज्ञानी का नाहीं तंदा, ब्रह्मज्ञानी ले तो आप बंधा, ब्रह्मज्ञानी का हो सफला, ब्रह्मज्ञानी सफल फला, ब्रह्मज्ञानी संग सगल उदार, नानक ब्रह्मज्ञानी जप सगल संसार, ब्रह्मज्ञानी का एक रंग, ब्रह्मज्ञानी का

का सकल मन माहे। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश, ब्रह्म ज्ञानी का कथिया ना जाए अदा खियर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म

जन गोए कर कृपा अंतर उतारे पास प्रेत मुग्ध पात्र को उतारा सर्वरो का आखत नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम काहो जुगत किते ना पाइय धर्म नानक तिस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म जिसका मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत रामदास।

नानक दुख परम भाव जाए अष्टपदी मानु की टेक पृथ्वी सब जान देवन को एका भगवान जिसके दिए रहे अगाए बहुर न दर्शना लागे आए मारे राखे एक हुआ मानु कह कृष्णाई हाथ जिसका हुकम भू सुख जिसका नाम रा कंठ परोए सिमर सिमर सिमर प्रभु सोए नानक विघन विघन न लागे कोय उस सत मन में कर निरंकार कर मन मेरे सद व्यवहार निर्मल रसना अमृत पियो सदा सुला कर लह जियो नैनो भेख ठाकुर का रंग सा संग मिनसे सब संग।

जिस पर अपना कृपा करा सो सेवक हो किसते डरा जैसा सा तैसा दृष्टाया अपने कार्य में आप समाया सोदत सोदत सोदत सिज्या गुरप्रसाद तसा बुझया जब देखो तब सब किश मूल नानक सो सुखम सोई असूल न कि जन्म न किश मरियापन चलते आप ही करे आवन जामन दृष्टान दृष्टा गया कारी धारी सब सृष्ट आप सगल में आप अन्न के जुगत राज थाप थाप अविनाशी नाय किश

धनमंद प्रभु के सेवक सगल उदार प्रभु के सेवक दुख विसार नापे मेले कृपाल गुरु का शब्द जपे निहाल उनकी सेवा सोई लागे सुनो कृपा करे बट भागे नाम जपत पावे विश्राम नानक तिन प्रको उत्तम करमान जो कुछ करे सो प्रभु गै रंग सदा सदा बसे हर संग सह सुभाए हो वै सो हुए करने हार पछाणे सोए प्रभु का किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना शिव जत समाहे समाए वही सुख निदान उन्होंने

व्रते समय सेवकी मनसा पूरी भई सतगुरु ते निर्मल माथ लाई जन को प्रभ हो दयाल सेवक इन्नो सदा निहाल बंधन काट मुख जन भया जन मरण दुख भ्रम गया शुन्नी सरदा स पूरी रवरिया ससंग जूरी जिसका सतन लिया मिलाए नानक भगती नाम समाए सो क्यों बिसरै जय घाल न भान सो क्यों बिसरै जय किया जाने सो क्यों बिसरै जन सब किश दिया सो क्यों बिसरै जय जीवन जिया सो क्यों बिसरै जय

पायतर ये संसार बिन भक्ति धनम सीशार सर्व कल्याण सुख निध नाम बूढ़ जात पाए विश्राम सकल दुखावतनाश नानक नाम जपो गुंता सुभजी प्रीत प्रेम रस चाओ मंत्र अंतर ए स्वाओ नेत्रोपेक दर्श खोए मान बिगसे साध चरण धोए भगत जना के मन दा रंग बिरला को पावे संग एक बस दीजे कर माया गुरप्रसाद नाम जप लया ताकि मैं कहीं ना जाए नानक रहया सर्व समाए प्रभक शांदीन दयाल भगत बशल सदा कृपाल अनाथ नाथ गोबिंद गोपाल सर्व घटां करत प्रतपाल आदि पुरु कारण करतार भगत जनांगे प्राण आधार जो जो जपे सोए पुनीत भगत पाए लावे मन हीत हम निर्गुनियार नीच अजान नानक तुमरे स्वर्ण स्वर्ण पुरख भगवान सर्वै कुंठ मुक्त मोख पाए ए गनम खर के गुण गायन कराज भोग बढ़ियाई हर के नाम की कथा मन पाए बहु भोजन का पर संगीत रसना जपती हर हर नीत भरी सो करनी शोभा तन मंदिर ते बसे पून गुरमंत सा

पै फिर जाप अष्टपदी जब कार्य काशना दृष्टिता पापो तब कहते होता जब तारी अपन समात बैर विरोध के संकमात जब इसका वर्ण चिन्ह जापत भरसौ कहो किसे व्यापत जब अपने आप आपार ब्रह्म मोहो कांग शब्द परमापन खेला वर्तीजा नान करने हार न दूजा जब होबत प्रभ केवल तनी ता बंद मुक्त कहो किसको गनी जब एक हर अगम अपार तब नर्क स्वर्ग कहो कौन आओ तार जब निर्गुण प्रभ सह सुभाय तब शिव शकत कहो कित ठाए जब आपे आप अपनी जो तरह तब कमन ने डर कमन कत डर जब अपन चलत आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख आपना संत है जन्म मरण कहो कहा विनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जमकी त्रास कहो किस होए जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत रेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे अपने आप आविय जर्जा नानक अपन रूप आवियो वर्जा जय निर्मल पुरख पुरख बातो तात अभिन मैल कहो क्या तोता जय निरंजन निरंकार निर्बान तय कौन को मान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदी तय छल क्षेत्र लगत कहो कीस जय जो स्वरूपी जो संग समावे ते किसे भूकम द्रवतावे करण करामन करने हार नान करते का नाय समार जब अपनी शोभा आपन संग बनाई तब कमन माए बाप मित्र सुत पाई जय सर्व कला पे प्रवीण तय भेद

मैं मोह परम व्यापार दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार कियो बखियान अपन खेल आप कर देखा है खेल संकोचा तो नानक एक है जपगत भगत आप जपसरे पासार संत प्रताप दूह पाका आपे तने उनकी पुष्पा उन्हों बनी आपे कौत करे अंत जो जा

महाष्टपति शांत संग अंतर प्रभु ढीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सकल समेगरी एक सघाट माहे अनकरंग नाना दृष्टा हे नाव निध अमृत प्रभु का नाम देही मैं इसका विश्राम सुन समाद अनत नाद कहना जाइया चर्च विस्माद तीन देखिया से आप दिखाए नानत जन सोजी पाए सुंतर सो बार आनंद कटकड़ ब्याप रहा भगवंत तरण माया गाश बयाल सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल बंधन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आ गया तैसा कर्म पौन पाणी बस संतर माहे चार गुण दसे समाहे दसे भिन्न

गावे को जापै दिसै दूर, गावे को वेखै हाद राह दूर। कथना कथी ना आवै तोट, काथ काथ कथी कोटि कोट कोट।

है। अबे सल सलाम में सलीख तो मुदा में गरीब सिकाहते है, गरीब परास्ते है, बिलंदल मकान है, जमीन अल जमान है,

है, विश्वम्प्र है, करुणालय है, निरपनायक है, सर्वपायक है, पावपंजन है, अर्गंजन है, रिपतापन है, जप जापन है, अकलंकृत है, सर्वाकृत है, कर्ता कार्य है, हरता हार है, परमात्म है, सर्वात्म है, आत्मवास है, जास के जास है, पजांग प्रयाशंद

बचाई। कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुभराता किल बुख सकल देह को हरता दुष्ट दोखन कौशय करता।

मन धन सब सौप गुर कौ हुकम मनै पाइये हुकम मनहु गुरु केरा गावो सच्ची बाणी कहे नानक सुनहु संतो कथिहो अकथ कहानी।

चापड़ी धन त्रि सतगुरु पाया ये चे पोते जन्म परमिया सतगुरु सब सुनाया सतगुरु जे बड़दाता को नहीं सब सुने लोग सब आया सतगुरु मिले सच पाया जिन विचो आप गवाया जिनी सच सच बुझाया जिनी सच सच बुझाया।

परम सम्मान योग जुग जुग अटल चवर शतर तख्त दे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन गोद विच साजी निवाजी गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ अते मीडिया राही गुरु चरणा नाल जुड़ बैठी साध संगत जीओ आप सारे ही बड़भागी हो धनता दे योग हो जो सतगुरां दी पावन बाणी अमृतमई बाणी सरवण करके आत्मक आनंद माण रहे हो अपना ये मनुखा जन्म सफला कर रहे हो। आओ अज जो अमृत वेले सतगुरां ने पावन हुक्मनामा बख्शिया उस दी विचार आपां कर सकीए। विचार आरंभ करन तों पहला सतगुरां दी बख्शी हुई फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज जो सतगुरां ने पावन फुरमान बख्शिया उस दे विच जिहड़ा पहला श्लोक है वो भगत कबीर जी दी पावन रचना तो उच्चारण किया होया है।

सोहाग जय मुख भेद गायत्री निकसै सो क्यों ब्राह्मण बिसर कर जाकै पाए जगत सब लागै सो क्यों पंडित हर ना कह काहे मेरे बामन हर ना कह राम पर ना बोल है पांडे दोजक पर है रहाओ आपन ऊच नीच घर भोजन हठे कर्म कर उदर पर है चौदस अमावस रच रच मंग है कर दीपक लै कूप पर है तू ब्राह्मण मैं कासी एक जुलहा मोहे तोहे बराबरी कैसे कै बन है हमरे राम नाम कह उबरे भेद भरोसे पांडे डूब मरह तरबर एक अनंत डार साखा पह पत्र रस भरिया ए अमृत की बाड़ी है रे तिन हर पूरा करिया जानी जानी रे राजा राम की कहानी अंतर जोत राम परगासा गुरमुख बिरला जानी रहाओ पावर एक पहुप रस बीदा बारह ले उर धरिया सोरह मध्य पवन चकोरिया आकाशे फर फरिया सहज सुन एक बिरबा उपजिया धरती जल हर सोखिया कह कबीर हौता का सेवक जिन एह बिरबा देखिया मुंद्रा मोन दया कर झोली पत्र का करो विचार रे खिंथा एह तन सियो अपना नाम करो आधार रे ऐसा जोग कमाव हो जोगी जब तब संजम गुरमुख भोगी रहाओ बुद्ध बपूत चढ़ावो अपनी सिंगी सुर तो मिलाई कर बराग फिरो तन नगरी मन की किंगरी बजाई पंच तत् लै हृदय रख हो रह नरल मताड़ी कहत कबीर सुनो रे संतो धर्म दया कर बाड़ी कवन काज सिरजे जग भीतर जन्म कवन फल पाया भाव निध तरन तारन चिंता मन एक निमख न एहो मन लाया गोविंद हम ऐसे अपराधी जिन प्रभ जी ओ पिंड था दिया तिसकी पाओ भगत नहीं साधी रहा पार तन पारती निंदा पर अपवाद न छूट आवा गवन होत है फुन फुन एह प्रसंग न टूट जह कार कथा होत हर संतन एक निमख न कीनो मैं फेरा लंपट चोर दूत मतवारे तिन संग सदा बसेरा

दीन दयाल कृपाल दमोदर भगत बछल पय हारी कहत कबीर पीर जन राखो हर सेवा करो तुम्हारी जय सिमरन होए मुक्त द्वार जाए बैकुंठ नहीं संसार निरपौ कै घर बजावह तूर अनहद शब्द सदा भर अनहद बजह सदा भरपूर ऐसा सिमरन कर मन माहे बिन सिमरन मुक्त कत नाहे रहाओ जय सिमरन नाही ननकार मुक्त करै उतरै बहु भार नमस्कार कर हृदय माहे फिर फिर तेरा आवन नाहे जय सिमरन करह तू केल दीपक बांध धरे।

पटम वरतान सेज सुखाली बिकसा जियो सो सिमरन तू अन दिन पियो जय सिमरन तेरी जाय बलाए जय सिमरन तुझ पोहै नामाए सिमर सिमर हर हर मन गाइयै एहो सिमरन सतगुर ते पाइयै सदा सदा सिमर दिन रात उठत बैठत सास ग्रास जाग सोए सिमरन रस भोग हर सिमरन पाइयै संजोग जय सिमरन नाही तुझ भार सो सिमरन राम नाम आधार कह कबीर जाका नहीं अंत तिसके आगे तंत न मंत राम कली घर दूजा बाणी कबीर जी की एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद बंद च बंधन पाया मुक्त गुर अनल बजाया जब नख सिख एहो मन चीना तब अंतर मज्जन कीना पावन पत उन मन रहन खरा नहीं मृत न जन्म जरा रहाओ उल्टीले सगत सहारं पैसीले गगन मझारं बेदियले चकर भुआंगा भेटियले राय नसंगा चुकीले मोह मयासा सस्कीनो सूर गरासा जब कुंभक भरपुर लीना तह बाजे अनहद बीना।

और सुख मना पौने बंद रहाओ गो। चंद सूरज दोए सम कर रखो ब्रह्म ज्योत मिल जाओ गो। तीर्थ देखना जल मैं पैसो जी जंत ना सतावो गो। अठसठ तीर्थ गुरु दिखाए घट ही भीतर नाओ गो। पंच सहाई जन की शोभा भलो भलो न कहावो गो। नामा कहे चित हर सिंह राता सुन समाध समा।

कवन कहां ते आया। राम कोई न किसी के रा जैसे तरबर पंख बसेरा रहाओ। चंद न होता सूर न होता पानी पवन मलाया। साहित न होता वेद न होता कर्म कहां ते आया। खेचर पूचर तुलसी माला गुर प्रसादी पाया। नामा प्रणवै परम तत् है सतगुर होए लखाया। राम कली घर दूजा बानारसी तप कर उल्ट तीर्थ मर अगन दह काया कल्प कीज असमेध जग कीज सोना गर्भ दान दीज। राम नाम सरतौ न पूज छोड़ छोड़ रे पाखंडे मन कपट न कीज। हर का नाम नित नित है लीज रहाओ। गंगा जो गोदावर जाइय कुंभ जो केदार नहाइय गोमती सहस गौ दान कीज। कोट जो तीर्थ कर तन जो हवाले गार राम नाम सरतौ न पूज। आस दान गज दान सहजा नारी भूम दान ऐसो दान नित नित है कीज। आत्म जो निर्मायल कीज आप बराबर कंचन दीज। राम नाम सरतौ न पूज मनह न कीज रोस जमह न दीज दोस निर्मल निर्वाण पद चीन लीजै।

हर हर अगम अगोचर स्वामी जन जाप मिल सलल सलले हर के संत मिल राम रस पाया हम जन का बल बलले पुरखोत्तम हर नाम जन गायो सब दाल दो दुख दलले बिच देही दोख असाध पंच धातु हर किए खिन परले हर के संत मन प्रीत लगाही ज्यों देखा सस कमले उन वह कन कन कन हर गरजै मन बिगसै मोर मुरले हमरे स्वामी लोच हम लाई हम जीवै देख हर मिले जन नानक हर अमल हर लाए हर मेलो आनंद भले नट महला चौथा मेरे मन जप हर हर नाम सखे गुर प्रसादी हर नाम ते आयो हम सतगुर चरण पखे रहाओ उत्तम जगनाथ जगदीसर हम पापी सरन रखे तो बड़ पुरख दीन दुख भंजन हर दियो नाम मुखे हर गुण ऊच नीच हम गाहे गुरु सत गुरु संग सखे ज्यों चंदन संग बसै निम बिरखा गुण चंदन के बस खे हमरे अवगुण बिखया बिखै के बहु बार बार निमखे अवगुण यारे पाथर पारे हर तारे संग जन खे जिनको तुम हर राखो स्वामी सब तिनके पाप किरखे जन नानक के दयाल प्रभ स्वामी तुम दुष्ट तारे हरण खे नट महला चौथा मेरे मन जप हर हर नाम रंगे हर हर कृपा करी जगदीसर हर त्यायो जान पग लगे रहाओ जन्म जन्म के भूल चूक हम अब आए प्रभ शरण गे तुम शरणागत प्रतपालक स्वामी हम राखो बड़ पाप गे तुमरी संगत हर को ना उधरियो प्रभ किए पतद पवगे गुण गावत छिपा दुष्टारियो प्रभ राखी पैज जन गे जो तुमरे गुण गावै स्वामी हाँ बाल बाल बाल तिन गे भवन भवन पवित्र सब किए जह धूर परे जन पगे तुमरे गुण प्रभ कह ना सका हम तुम बड़ बड़ पुरख बड़ गे जन नानक को दया प्रभ धारो हम सेवह तुम जन पगे नट महला चौथा मेरे मन जप हर हर नाम मने जगन्नाथ कृपा प्रभ तारी मत गुरमत नाम बने रहाओ हर जन हर जस हर हर गायो उपदेश गुरु गुर सुने किल बिख पाप नाम हर काटे जिव खेत किरसान लुने तुमरी उमा तुम ही प्रभ जानो हम कह न सकै हर गुने जैसे तुम तैसे प्रभ तुम ही गुण जानो प्रभ अपने माया फास बंद बहु बंदे हर जप्यो खोल खुलने ज्यों जल कुंचर तंदुआ बांध्यो हर चेत्यो मोख मुखने स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम खोजो जुग जुगने तुमरी थाह पाई नहीं पावै जन नानक के प्रभ बढ़ने नट महला चौथा मेरे मन कल कीरत हर प्रवणे हर हर दयाल दया प्रभ तारी लग सतगुर हर जपने रहाओ हर तुम बड़ अगम अगोचर स्वामी सब त्यावै हर रुड़ने जिनको तुमरे बड़ कटाख है ते गुरमुख हर सिमरने एहो परपंच किया प्रभ स्वामी सब जग जीवन जुगने ज्यों सलल सलल उठै बहु लहरी मिल सलल सलल समने जो प्रभ किया सो तुम ही जानो हम नह जानी हर गहने हम बारक कौरिद उस्तत तारहो हम करह प्रभु सिमरने

संगत का गुण बहुत अधकाई, पड़गू सुआ गनक उधारे, परस न परस भय कुबजा कहो, लै बैकुंठ सुधारे, अजामल प्रीत पुत्र प्रतकीनी, कर नारायण बोलारे। मेरे ठाकर कै मन पाए भावनी, जम कंकर मार बदारे, मानक कथ कथ लोक सुनावे, जो बोले सो ना बिचारे, सर संगत मिले ता दृढ़ता आवे, हर नाम नाम निस्तारे। जब लग जियो पिंड है साबत, तब लग किछ न संहारे, जब घर मंदर आग लगानी, कड़ कूप कड़े पनहारे, सागत स्यो मन मेल न करियो हो, जिन हर हर नाम बिसारे। सागत बजन बिशुआ ज्यो डसिया, तज सागत पर परारे, लग लग प्रीत बहु प्रीत लगाई, लग साधु संग सवारे, गुर के बचन सत सत कर माने, मेरे ठाकुर बहुत प्यारे। पूर्व जन्म परचून कमाए, हर हर हर नाम प्यारे, गुर प्रसाद अमृत रस पाया, रस गावे रस विचारे, हर हर रूप रंग सब तेरे, मेरे लालन लाल गुलारे, जैसा रंग देहे सो होवे, क्या नानक जंत विचारे। नट महला चौथा राम, गुर सरन प्रभु रखवारे, ज्यो कुंचर तंदुए पकर चलायो, कर ऊपर कड़ निस्तारे, रहाओ प्रभु के सेवक बहुत अतनीके, मन सरदा कर हर तारे। मेरे प्रभ सरदा भगत मन पावे, जन की पैज सवारे, हर हर सेवक सेवा लागे, सब देखा ब्रह्म पसारे, एक पुरख एक नदरी आवे, सब एका नदर निहारे। हर प्रभ ठाकर रविया सब ठाही, सब चेरी जगत समारे, आप दयाल दया दान देवे, बिच पाथर कीरे कारे। अंतरवास बहुत मुस्काई, प्राण भूला मिर्ग सिंघारे, बन बन ढूंढ ढूंढ फिरता की, गुरपुरा घर निस्तारे।

ओंकार सतगुर प्रसाद। धन धन ओ राम बेन बाजै, मधुर मधुर धुन अनहद गाजै रहाओ। धन धन मेघा रोमावली, धन धन कृष्ण ओढ़ै कांबली। धन धन तू माता देवकी, जय ग्रह रामैया कवलापति। धन धन बन खंड बिंद्रा बना, जय खेलै श्री नारायण। बेन बजावै गोदन चरै, नामे का स्वामी आनंद करै। मेरो बाप माधो तू तन के सौ, सामली ओ बीठ लाई रहाओ। कर धरे चक्र बैकुंठ ते आए, गज हस्ती के प्राण उधारी अले। दोह शासन की सभा द्रौपदी, अंबर लेत उबारी अले। गौतम नार अहल्या तारी, पावन केतक तारी अले। ऐसा अदम अजात नाम दियो, तो शरणागत आई अले। सबै गढ़ राम बोला, रामा बोला, राम बिना को बोला रे रहाओ। एकल माटी कुंजर चीटी, भाजन है बहु नाना रे। असथावर जंगम कीट पतंगम, कट कट राम समाना रे। एकल चिंता राख अनंता, और तजो सब आसारे। प्रण बै नामा भय नह कामा, को ठाकुर को दासा रे। राग मारू महला पहला, घर पहला चौपदे। एक ओंकार सतनाम, करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत। अजूनी सह भंग गुर प्रसाद सलोक, साजन तेरे चरण के होए रहां साध तूर। नानक सरन तुहारिया, पेखो सदा हजूर। शब्द पिछो राधी पिछो राति, सदड़ा नाम खसम का लेह। खेमे छत्र सराय चे, दिसन रथ पीड़े। जिन्ने तेरा नाम ते आया, तिनको सद मिले। बाबा मैं कर्महीन कूड़ियार, नाम न पाया तेरा। अंधा भरम भूला मन मेरा रहाओ, साध किते दुख पर फुड़े। पूर्व लेखे माए, सुख थोड़े दुख अगले। दुखे दुख बिहाए, बिछड़िया का क्या बिछड़ा, मिलिया का क्या मेल। साहिब सो सालाही है, जिन कर देखिया खेल। संजोगी मेला बड़ा, एत तन कीते भोग। बेजोगी मिल बिछड़े, नानक भी संजोग। मारू महला पहला, मिल मात पिता पिंड कुमाया। तिन करता लेख लखाया, लिख जा दात जोत बड़ियाई। मिल माया सुरत गवाई, मूर्ख मन काहे कर सहमाना। उठ चलना खसम पाणा रहाओ, ताज साध सहज सुख होई। कर छड़ने रह न कोई, किछ खाजै किछ धर जाइया। जे बहुत दुनिया आईया, सज काया पट हंडाए। फुरमाइस बहुत चलाए, कर सेज सुखाली सोवै। हथी पौंदी काहे रोवै,

अहनस सहज सुभाय, दर्शन परसे गुरु के, जन्म मरण दुख जाय। दर्शन परसे गुरु के, जन्म मरण दुख जाय।

सुतड़े सुखी सवन जो रत्ते सह आपण प्रेम विशोहा धनी सो अठे पहर लवन।

पतत उदाहरण पार ब्रह्म सम्राथ पुरख अपार जसह उधारे नानका सो सिमरे सिरजनहार दूजी छोड़ कुवाटड़ी इक ससौ चित लाए दूजै भावी नानका वहन लुड़ंदड़ी जाए।

कहो नानक सुनरे मना तेह सिमरत गत होए जेह सिमरत गत पाईऐ तेह भज रे तै मीत कहो न

कहो नानक हर भज मना अंत सहाई होए। जन्म जन्म परमत फिरेओ मिट्यो न जम को त्रास। कहो नानक हर भज मना निरपै पावहे बास।

बल छुटक्यो बंधन परे कछु ना होत उपाय कहो नानक अब ओट हर गज ज्यों हो सहाय बल हुआ बंधन छुट्टे सब किश होत उपाय नानक सब किश

उधार। एह वस्त तजी नह जाई नित नित रख उर थारो। तम संसार चरण लग तरिय सब नानक ब्रह्म पसारो।

पंचरागनी संग उच्चर ही प्रथम भैरवी बिलावली पुन्याकी गाव हे बंगली पुन असलेखी की पई बारी ए भैरव की पांचो नारी पंचम हरख दिसाख सुना वहे बंगालम मद माधव गा वहे ललत बिलावल गा वहे अपनी अपनी भांत अष्ट पुत्र भैरव के गा वहे गायन पात्र द्वितीया माल कौशक आला पहे संग रागनी पा चौथा पहे

अष्ट पुत्र श्री राग के गुंड कुंभ हमीर खस्टम मेघ राग वैगा वहे पांचो संग ब्रंगन ला वहे सोरठ गूण मलारी धुनी पुन गावह आसा गुनगुनी।

साचा साहेबो साच नाए भाख्या भाव अपार आखही मंगह देह देह दात करे दातार फिर के अग्गै रखी जित दसै दरबार मुहाके बोलन बोलिया जित सुन धरे प्यार अमृत वेला सच नाओ वड़ियाई विचार करमी आवै कपड़ा नदरी मुख द्वार

आनंद सुनो बड़ भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार भ्रम प्रपाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन भये सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया।

गुरु वा गुरु अखां बंद करके मन एक हुंदा फिर एक नाल जुड़ेगा जदों सुनेगा